मैं खुदा पर जो मेरा और तुम्हारा सबका परवरदिगार है भरोसा रखता हूँ। जमीन पर जो चलने फिरने वाला है वो इसको चोटी से पकड़े हुए है। बेशक मेरा परवरदिगार सीधे रस्ते पर है।

0: तो यूसुफ को या तो जान से मार डालो या किसी मुल्क में फेंक आओ, फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और उसके बाद तुम अच्छी हालत में हो जाओगे।
1: قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا

उन्होंने कहा कि तुम लोग 7 साल मुतवातिर खेती करते रहोगे तो जो गल्ला काटो तो थोड़े से गल्ले के सिवा जो खाने में आए उसे होशों में ही रहने दो।

0: फिर उसके बाद एक ऐसा साल आएगा कि खूब मेह बरसेगा और लोग उसमें रस निचोड़ेंगे।
1: وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یو سی پی
2: ایک نیا انداز ایک نئی
3: سوچ
2: एक नई पहचान
3: एक नई लगन
2: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान
3: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की
3: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन
2: जब मिलती है लगन
3: मेहनत
2: कामयाबी और खुलूस
3: तो बनती है
2: यूसीपी की दुनिया
3: आप सुन रहे हैं FM 92.6
2: सुनते रहिए

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं, चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।
4: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya. Ki Duniya. Ki Duniya.

0: कंट्रोल, आवाज आ रही है? सच बोलूं, दिल भी थोड़ा कांप रहा है।
1: आवाज भी और
2: धड़कन भी सन्न हो गया।
0: The nets fly over and out.

मोबाइल डिवाइस की पीटीए से तस्दीक के मुतालिक जानने के लिए खरीदते वक्त सबसे पहले इसका 15 हिस्सों का IMEI नंबर *#06# डायल करके मालूम करें और फिर IMEI नंबर 8484 पर SMS करें या वेबसाइट से चेक कर लें कि ये डिवाइस पीटीए से तस्दीक शुदा है। पीटीए,

जिंदगी को जीने से, जिंदगी को पाने तक। उस कबा के उठने से उस कबा के खुलने तक, आंख के तमाजत से होंठ की हरारत तक, गाल पे लगा गाजा होंठ पे लगी लाली, खुद ब खुद पिघलने दे, खुद ब खुद पिघलने से खुद ब खुद पिघलने तक, खुद ब खुद पिघलने दे, हाथ की लकीरों से रथ जगों के तीरों से और आगे जाने दे, और आगे जाने से और

0: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है, डरे नहीं और चीख के कहें।
1: खबरदार, छूना मना है।
2: मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।

ए सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है। हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
1: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
2: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।
3: Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: अरफा करीम फैसलाबाद के नजदीकी गांव राम दिवाली में 2 फरवरी 1995 में पैदा हूं। आपके वालिद अमजद करीम रंधावा एक आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर हैं। अरफा करीम सिर्फ 3 साल की उम्र में स्कूल जाने लगी। 9 वर्ष की उम्र में 2004 में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का इम्तहान पास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तहलका मचा दिया।
1: इत्तेदाही परवरिश तो माँ ज्यादा बता सकती है क्योंकि राज तो माँ से होता है।
2: अरफा जब हमारे घर में आई तो आप लोग बहुत खुश थे कि अल्लाह ताला ने एक रहमत हमारे घर भेज दी है। और जैसे कि माओ के करीब होते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा, और जो उसकी इत्तेदाही परवरिश या उनको बहुत करीब से देखने का मौका सबसे पहले माँ को मिलता है। वो बहुत छोटी सी थी जब से मुझे फील हो गया था कि उसके रिस्पॉन्स बड़े तेज़ हैं, हर काम उसने आम बच्चे के निस्बत जल्दी करना शुरू किया, मसलन बोलना, बैठना, चलना, ये सब कुछ उसने नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा जल्दी किया। और उसकी आँखें, आप अगर उसके बचपन की तस्वीरें देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसकी आँखें भी बोलती थी। और उस वक्त जब उसको बोलना भी नहीं आता था, वो बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी बॉडी लैंग्वेज से आपको जवाब दे देती थी कि हम क्या समझना चाह रहे हैं। फिर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसको जब स्कूल में दाखिल करवाया बहुत छोटी एज में, दरमियान में उसकी दादी के साथ उसको अल्लाह ने जन्नत नसीब करे कुछ टाइम मिला, जो 2-2.5 साल की एज थी अरफा की जब उसकी दादी अम्मा फौत हो गई थी, उन्होंने बहुत सारा उसको कलमे, दुआए कनूत और आयतुल कुर्सी इस किस्म की चीज़ें सिखाई। अरफा 1.25 साल की थी जब नात भी पढ़ती थी, कौमी नगमा भी गाती थी, मेरे पास उसकी आवाज़ें अभी तक रिकॉर्ड हैं। हर चीज़ में वो नात हो, वो किरत हो, वो मौसीकी हो, वो डिबेटिंग हो, कंपेयरिंग हो, कोई दुनिया की ऐसी फील्ड नहीं थी स्कूल में रहते हुए जिसमें वो नमाया नहीं थी या जिसमें वो पीछे हट गई हो। हर चीज़ में भरपूर माशाल्लाह उसने हमेशा हिस्सा लिया।
0: अरफा ने दुनिया की कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का एहसास हासिल किया। इससे दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ, जिससे दुनिया में ये पैगाम गया कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है और ना ही पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम पर पाबंदी है। अरफा करीम की तरह और बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे मुल्क में मौजूद हैं। हमें सिर्फ इनको तराशने की जरूरत है। जैसे कहते हैं, मोती तो बहुत होते हैं लेकिन सच्चा मोती हमेशा समुन्द्र की गहराई में मिलता है, और जब हम इसकी गहराई तक पहुंचे तब वो मोती आसमान तक जा पहुंचता है। दूसरी तरफ अरफा करीम ने ये पैगाम दिया कि तालीम में आगे बढ़कर दुनिया के सामने पाकिस्तान का असल चेहरा दिखाया जा सकता है। अरफा करीम ने एक इंटरव्यू में कहा था, अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो फिर जहन से झिझक को झटकना होगा। अगर आप झिझकते रहेंगे तो फिर हर काम में झिझकेंगे, और अगर आप पुर एतमाद होंगे तो फिर हर काम बाएतमाद होगा। लिहाजा झिझक को कभी अपने जहन पर काबिज ना होने दें। खुदादाद साहितों की मालिक, दुनिया की पहली कम उम्र तरीन आईटी एक्सपर्ट और तमगा हुसन कारकर्दगी की हामिल अरफा करीम रंधावा एक शायरा भी थी। उनकी उस वक्त की 19 अंग्रेजी नज़में इंटरनेट पर मौजूद हैं। इन्होंने 16 साल की उम्र में वो सब हासिल कर लिया जिसे हासिल करने की जुस्तजू में कई साल लोग तगोदो में लगे रहते हैं। पूरी दुनिया में सिक्का मनवाया और पूरी दुनिया के सामने मुल्को कौम का नाम रोशन किया। अरफा करीम जब बिल गेट्स से मिली तो इनके बारे में कहा गया कि पाकिस्तान का दूसरा रुख अरफा करीम है। अरफा करीम को पाकिस्तान के दूसरे चेहरे का नाम दिया, एक रोशन चेहरे का नाम।
3: ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाएं इसके,

0: अरफा करीम को माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल की सनद दी गई। ये ना सिर्फ अरफा के वालदेन के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए फख्र की बात थी। इसके अलावा दुबई में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिरीन की जानिब से 2 हफ्तों के लिए इन्हें मदऊ किया गया, जहां इन्हें मुख्तलिफ तोहफाजात और एजाजात दिए गए। अरफा करीम ने दुबई के फ्लाइंग क्लब में सिर्फ 10 साल की उम्र में तैयारा उड़ाने का सर्टिफिकेट भी हासिल किया। अरफा करीम को 2005 में इनकी सलाहियतों के एतराफ में सदारती पाकिस्तान यूथ अवार्ड से भी नवाजा गया। सिर्फ 10 साल की उम्र में इन्होंने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हासिल किया, जिसको हासिल करने के लिए उम्र लग जाती है। दुनिया में से 1000 से ज्यादा मंदूबीन में से पाकिस्तान का मस्बत पहलू उजागर करने वाली सिर्फ अरफा करीम थी। अरफा करीम अपनी बीमारी से पहले नासा के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। 22 दिसंबर 2011 को मिर्गी का दौरा पड़ा। इनको फौरी तौर पर CMH अस्पताल पहुंचाया गया। वहां इनको दिल की तकलीफ भी शुरू हो गई, जिसकी शिद्दत से कोमे में चली गई। 2 जनवरी को बिल गेट्स ने अरफा के वालदेन से राब्ता किया और इनकी ख्वाहिश का इजहार किया कि अरफा का इलाज अपनी जेरे निगरानी अमरीका में करवाना चाहते हैं। बिल गेट्स के ही कहने पर अमरीकी डॉक्टर्स का पैनल बना, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अरफा करीम के इलाज में मुआवनत करते थे। 2012 में 26 दिन कोमे में रहने के बाद 14 जनवरी शब 10 बजे तमाम पाकिस्तान के चैनल्स पर इनकी अफसोसनाक खबर नशर हुई। पूरा पाकिस्तान सदमे से निढाल हो गया। कुछ लोग मर कर भी अमर हो जाते हैं, अरफा उनमें से एक थी। इनको खराज अकीदत पेश करते हुए हुकूमत ने बाद अज मर्ग लाहौर के एक पार्क और कराची का IT सेंटर अरफा करीम के नाम से मंसूब कर दिया। इसके अलावा इनके गांव को भी अरफा करीम का नाम दे दिया गया। कर्नल अब्दुल करीम, अरफा करीम के वालिद, जिनका काम मुल्क का दफा करना है, जो कि आर्मी ऑफिसर हैं, इन्होंने पाकिस्तान को एक रास्ता दिखाया कि पाकिस्तान के नजरियाती सरहदों पर दफा अरफा करीम जैसी बेटियां हैं, जिनसे दुनिया के सामने पाकिस्तान का नाम रोशन किया जा सकता है।
1: और उसके किस्मत में अल्लाह ताला ने हमेशा ही कामयाबियां डाली। तो वो अपनी किस्मत साथ लेके आई थी, चमकता सितारा थी अपने नाम की तरह। अरफा का मतलब ही होता है कि बुलंद तरीन, सबसे आला, सबसे अरफा। वही मकाम उसको दुनिया में मिला है और दुआ हूं कि वही मकाम उसको अल्लाह ताला के हाथ नसीब हो।
0: पाकिस्तान की बेटी पूरी सरारियत के पर्दों में छुपी हुई परी की तरह इस दुनिया से कूच कर गई।
2: मौसीकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास, मस्ती के पास, सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है, इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है। लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
1: इस हुनर कदा में हम सदा कार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: फर्क पड़ता है जब कानून नाफिज करने वाला हर जवान हर इदारा अपनी कौम को मनशियात से बचाता है और हर शहरी 1415 पे मुकम्मल राजदारी और जिम्मेदारी से मनशियात फरोशों की इत्तला देता है। फर्क पड़ता है हमारी हिम्मत से हमारी कॉल से। 1415 मनशियात अब नहीं।
1: मौसीकी के सुर और ताल,
2: सुर और ताल,
1: ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार
2: और तकरार,
1: सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
2: मस्ती के पास,
1: सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

कि हम कितने वी बिकम इग्नोरेंट आई थिंक इफ आई डोंट से और टैग और लेबल इन अ वे दैट हम इग्नोरेंट हैं, हम बन जाते हैं और हमें अंदाज़ा नहीं होता कि इस चीज़ के क्या रिपरकशंस हैं. बिफोर वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स क्विकली टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड देन जॉइन अस बैक.

0: Boston, Funiversity Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया. अच्छा आयशा, एज एन इंस्ट्रक्टर, राइट, एज अ टीचर ऑफ लिटरेचर, आप से मैं ज़रूर इस बारे में बिल्ड करना चाहूँगी कि हाउ वुड यू एडवाइस योर स्टूडेंट्स, राइट, बिकॉज आई थिंक यू आर स्टूडेंट काउंसलर एज वेल. हाउ वुड यू एडवाइस स्टूडेंट्स टू स्टैंड अप अगेंस्ट गॉसिप, और आप इससे मुतालिक कैसे उनकी ग्रूमिंग कर सकती हैं फॉर अ बेटर कैरेक्टर, और टू कर्टेल इट, टू नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ इट, और वैसे भी जनरली आप क्या समझते हैं कि टीचर्स इस तरह का एनवायरनमेंट कैसे फॉस्टर कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, टू क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर द स्टूडेंट्स.
2: So how can teachers foster this environment? Teachers बहुत कुछ कर सकते हैं अपने एंड पे. और
1: अगर वो करना चाहें तो
2: obviously. और मेरे ख्याल में वो इसकी शुरुआत इस तरह से कर सकते हैं कि you know, they can, first of all, they can become role models themselves. And how do they do that? They can do this by demonstrating integrity and fairness.
1: Charity begins at home.
2: And professionalism to cap it all.
1: Of course.
2: And so what does that mean? So it means that you do not do slander.
1: Oh, yes.
2: You don't spread toxic or negative remarks about colleagues, and you just simply practice the values that you wish to instill in your students. All right. So जब आप एक दफा इस चीज को बिल्ड कर लें, एक फाउंडेशन आप बिल्ड कर लें, तो उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि यू कैन सेट अप एडिशनल प्रैक्टिसेस. सो यू नो, यू कैन सेट अप ए क्लियर, यू नो, यू कैन सेट अप क्लियर ग्राउंड रूल्स अर्ली ऑन. सो फॉर एग्जांपल, एनकरेज लिसनिंग विदाउट इंटरप्शन इन द क्लासरूम,
1: राइट,
2: फ्रेम डिसएग्रीमेंट एज डायलॉग एंड नॉट डिबेट्स, एंड यू कैन एम्फसाइज रिस्पेक्ट फॉर ऑल व्यू पॉइंट्स. And you can also diversify the syllabus, including authors from different cultures and genders and political positions.
1: Oh, right? Wow.
2: So that way, students would be more open to interpretation and they would be sensitive to varied points of view.
1: I think it's a lovely advice and some beautiful words that you have given. Aapne ek baat ki ke they should practice the values.
2: Exactly.
1: And I hope they realize there are some things.
2: So you teach by example, in other words.
1: Yeah. And I think ke teaching, uski essence ko, it needs to be recognized by the teacher himself first, right? So just like you have mentioned, ke unless we realize it on our own and practice it ourselves, we won't be able to impart it to the others, right? I think it had been a lovely discussion, और मुझे बहुत मजा आया आपके साथ इस बारे में बात करके.
2: मुझे भी बहुत अच्छा लगा.
1: मेरा ख्याल है ये एक पहला छोटा सा स्टेप था दैट वी हैव इनिशिएटेड इनटू कैरेक्टर बिल्डिंग, और हमने एक छोटी सी चीज को डिस्कस करना शुरू किया जो लगती बहुत छोटी है लेकिन असल में इट्स टू मॉन्स्ट्रस एंड टू बिग टू बी हैंडल्ड दैट वे. और मेरा ख्याल है कि nobody would have unpacked it the way you have done, Ayesha, connecting it with examples from literature. And that also speaks about the importance of literature. You know, literature has been there narrating to us stories for the sake of extracting moral lessons from it, right? Anyways, I'm running short of time. We need to conclude it. And I would just end it. Ayesha, it had been lovely to have you here discussing these wonderful things and imparting wisdom to the students and every listener who is a part of the discussion. Thank you for your time. And I look forward anxiously to the other episodes in the series aimed at character building. Thank you very much for being a part of Safe Spaces, Ayesha. I'll see you next time, definitely. Thank you, everyone who has been listening to us. Thank you for your time. If you have any questions or queries, you can go to the page and type the questions. Take good care of yourself. Aap sun rahe the FM 92.6 UCP ki duniya.

मेरे कारवां हम रूहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उनवा थे असल दास्तां।

ये फेस्टिवल चार दिन जोशो खरोश से मनाया जाता है। पहले दिन लोग सुबह सवेरे अपने घरों को सजाते हैं। बाद अजां सब लोग ढोल की थाप पर रक्स करते हुए मवेशियों की चराहगाहों की तरफ चले जाते हैं। वहां पर मर्दों को दूध पिलाया जाता है और औरतों को दही दिया जाता है। चरागाहों से वापसी पर माएं खुश्क मेवा जात लाती हैं, जिनका वो अपने बच्चों के नाम का सदका देती हैं। दूसरे दिन को छड़क पीपी यानी योगर्ट ड्रिंक डे के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये लोग एक दूसरे पर दही फेंकते हैं और अपने मवेशियों और खेतों की सलामती के लिए दुआ करते हैं। तीसरे दिन को छुटक जोशी मतलब छोटी जोशी कहते हैं। इस दिन भी दूध घरों में तकसीम किया जाता है, जो बाद में 10 दिन तक जारी रहता है और इस रस्म को गुलपारी कहते हैं। चौथे दिन को ये गुना जोशी के नाम से पुकारते हैं, जिसका मतलब बड़ा जोशी है। इस दिन मर्दों और औरतों की पाकीजगी के लिए रस्म की जाती है और बहार की आमद की खुशी में ये लोग अखरोट के दरख्तों को हिलाते हैं। शाम के वक्त औरतों के लिए पाकीजगी की एक और रस्म होती है, जिसको सी साओ कहते हैं। इसमें औरतों पर दूध छिड़क के इनको पाक किया जाता है। चौथा दिन इनके लिए बहुत अहमियत का हामिल है। इस दिन कलाशा की लड़कियां एक मखसूस डांस करती हैं, जिसको छा कहा जाता है।

0: इस रक्स में लड़कियां एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर दायरे में घूमती हैं। चिलम जोशी फेस्टिवल असल में कलाशा के लोग अपने घरों को वापसी की खुशी में मनाते हैं, जो मौसम सरमा की वजह से कुछ अरसे के लिए जम जाते हैं। पाकिस्तान में ये कबीला अपनी रिवायात की वजह से मुनफरिद शोहरत का हामिल है। हर साल सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ आती है और चित्राल की इस वादी के हसीन नजारों और यहाँ रहने वाले लोगों की मेहमान नवाजी से लुत्फंदोज होते हैं। आप सुन रहे थे वादी कैलाश के चिलम जोशी फेस्टिवल पर मबनी एक डॉक्यूमेंट्री। हिदायतकार अली नसीब, तहरीर हलीमा सादिया, स्क्रिप्ट राइटिंग निदा शुएब, म्यूजिक डायरेक्शन अब्दुल कादिर, पोस्ट प्रोडक्शन दानियाल अकबर खान, एडिटर मुस्तफ़ा यासिर। आप सुन रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।
1: سامعین، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب FM 92.6 پر ابھی آپ سن رہے تھے خصوصی فیچر چلم جوشی۔
2: اس ہنر کدا میں ہم صداکار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: And now, you are gonna listen an exclusive documentary on 92.6 FM UCP ki duniya.
1: भूख चेहरे पे लिए चांद से प्यारे बच्चे बेचते फिरते हैं गलियों में गुब्बारे बच्चे हो गया चर्ख सितमगर का कलेजा ठंडा मर गए प्यास से दरिया के किनारे बच्चे बच्चे उम्मीद की किरण और जिंदगी की नवीद होते हैं इनके हंसते मुस्कुराते चेहरे और जगमगाती आंखों से ख्वाब नजर आते हैं इनकी हंसने की झनकार हमारे चेहरों पर मुस्कान और घरों में रौनक बिखेर देती है इनकी नन्ही नन्ही शरारतें आपके अंदर जीने की उमंग पैदा करती हैं इन्हीं की वजह से आपके घर में रौनक और जीने का हुस्न नजर आता है ये नन्हे तारे बाज औकात आपके लिए मशले राह और जिंदगी गुजारने का मकसद बन जाते हैं बच्चे तो रयाकारी से पाक होते हैं लेकिन बाज औकात हालात रहन सहन और तर्ज जिंदगी इनको अपने अपने रंग में रंगती चली जाती है
2: हम सुबह सुबह घर से आ जाते हैं तो इधर आके हम शहर पे काम करते हैं हमारे घर का किराया नहीं पूरा होता इसलिए किराया हम किराया दे नहीं सकते इसका किराया भी 5,000 रुपये हम चलो काम करते हैं हमारी मम्मी कहती है 1,000 रुपये चले जाओ उधर काम कर लो अब मजदूर है वो भी नहीं कर सकते इसलिए हम कुछ करके हम साथ में मिल के जो होता है हम करके आमदनी चला लेते हैं जो हम काम कर देते हैं ऊपर से पकड़ने वाले आए थे जो पैसे होते हैं वो ले जाते हैं और हम जो सारे दिन की मेहनत होती है उन पर पानी फेर जाते जो भी हम फिर भी छोड़ देते हैं हम कहते हैं अल्लाह का नाम है छोड़ दो हमें कोई जब गाड़ी साफ कर रहे होते हैं तो कोई 10 रुपये कोई 20 देते कोई देता नहीं जो अच्छे लोग होते हैं वो दे जाते कोई देते नहीं इसलिए हम अल्लाह का शुक्र है कभी कल का सरकट चल जाता है
1: और इसी तरह ये बच्चे नन्हे पौधे से तनावर दरख्त बनने के अमल से गुजरने लगते हैं जिंदगी की कश्मकश इन्हें फाइटर बना देती है दर दर की ठोकरें इनका मुकद्दर बन जाती हैं जिंदगी वक्त हालात और मजबूरियां कब इनके नन्हे नन्हे हाथों में खिलौनों की जगह अपने खानदान की जिम्मेदारियों का बोझ थमा देती हैं इन्हें पता ही नहीं चलता जिंदगी से लड़ते लड़ते ये बच्चे जिंदगी का कितना बड़ा सबक सीख जाते हैं ये इनके सिवा कोई नहीं बता सकता
3: मेरे अब्बू फोत हो गया मैं अकेला ही घर का खर्चा पानी चलाता हूँ और मैं 10 रुपये मैं गुब्बारे पे 1 कड़ा अपना खर्चा चलाता हूँ और मैं पीछे से 5 रुपये का गुब्बारा लाता हूँ और आगे आके मैं 10 रुपये का गुब्बारा बेच देता हूँ इस तरह मुझे रोज के 40-50 गुब्बारे मेरे बिक जाते हैं जिसमें फिर मुझे 250 रुपये मुनाफा हो जाता है वो मैं ला के अपनी अम्मी को दे देता हूँ मेरी अम्मी भी लोगों के घर में काम करती हैं इस तरह हम दोनों माँ बेटे कमाई करते हैं और हमारे घर का खर्चा पानी चल जाता है
1: ये वो बच्चे हैं जो वक्त से पहले ही वक्त और हालात का हर रंग और मौसम देख लेते हैं हालात की नामसादत इन पर जिम्मेदारियों का वो बोझ डाल देती है जिसके लिए वो ज़हनी, जिस्मानी और फितरी तौर पर तैयार भी नहीं होते लेकिन खानदान चलाने वाले गुर्बत के थपेड़े इनके हाथों में खिलौनों के बजाय मेहनत मजदूरी के आलात थमा देते हैं और इन्हें अपने वालदैन का हाथ बटाने के लिए जालिम बेहिस और बेरहम माशरे के दलदल में हाथ पांव मारकर अपने और अपने खानदान के बका का सामान करना होता है
4: मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था तब मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया तो उनकी टांग टूट गई अब वो मेरे पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते थे मैं इस दुकान पे आया तो उस्ताद जी से मैंने कहा कि मैंने आपके पास काम करना है तो मुझे पढ़ाई का शौक था तो उस्ताद जी ने मेरे से वादा किया कि वो मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे तो मैं इधर काम करना शुरू कर दिया अब छुट्टियाँ हुई हैं मैं बड़ी मेहनत से काम करता हूँ सुबह पहले शाम को सिर्फ स्कूल से पढ़ने के बाद आता था अब मैं सुबह भी आ जाता हूँ और दिन सही मेहनत से काम करता हूँ आधे से ज़्यादा काम मैंने सीख लिया उस्ताद जी कहते हैं कि अब मैं जल्दी मैकेनिक बन जाऊँ
1: होना तो ये चाहिए कि माशरे ऐसे बच्चों के साथ हुस्ने सलूक करे इनसे इनकी इस्तेतात और जिस्मानी ताकतों के मुताबिक काम ले मगर इनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हुए इन्हें काम के बोझ तले ऐसा दबा दिया जाता है कि वो 12-16 घंटे तक मुसलसल मुशक्कत करते हैं। पूरा काम लेने के बावजूद कलील मुआवजा दिया जाता है। सितम जरीफी ये है कि इन्हें इज्जत देना तो दरकिनार इनके साथ हकारत आमेज सलूक किया जाता है। इनके नाम की सूरत में इनके वालिदैन ने इन्हें जो शनाख्त दी होती है वो भी इनसे छीन ली जाती है। इन्हें इंतहाई हकारत से पुकारा जाता है। ओए छोटे, एक ऐसा ही लफ्ज है जो इनकी शख्सियत का हिस्सा बनकर रह गया है। इन्हें इस नाम के अलावा किसी और नाम से पुकारा भी नहीं जाता। इस नाम में इज्जत से कई ज्यादा तहकीर का पहलू पोशीदा है। क्या आपने कभी सोचा है जिन्हें आप ओए छोटे कहकर पुकारते हैं, क्या ये मुनासिब है? क्या आप कभी चाहेंगे कि आपके बच्चे को, जिसका नाम आपने इसकी पैदाइश के वक्त बड़े दुलार और प्यार से रखा था, उसे कोई धुतकारते हुए अल्फाज से पुकारे? नहीं ना, तो एक पल सोचिएगा जरूर कि इन बच्चों पर क्या गुजरती होगी। ये छोटे मेरे और आपके आसपास हर वक्त हर जगह मिल जाते हैं। कचरे की बोरियां उठाए, पॉलिश का सामान लिए, फ्रूट बेचते, सड़कों पर टोकरियां लिए, बाजारों में शॉपर उठाते, मोटर मैकेनिक्स के पास, पंक्चर लगाने वाले के पास, इन बच्चों ने एक पूरे खानदान को अपने कमजोर जिस्म, पुरअज़्म हिम्मत और हौसले के पीछे पनाह दी होती है। ऐ छोटे की सदा लगाने से पहले बस एक लम्हा, एक लहज ये जहन में याद कर लें कि ये किसी घर के वाहिद बड़े हैं और बड़ों का एहतराम हमें सिखाया गया है। नाबालिग बच्चों का रोजी के हसूल के लिए काम करना चाइल्ड लेबर कहलाता है। बच्चों के काम करने की जो सबसे बड़ी वजह देखने में आई है वो गुर्बत है। महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में इन मजदूरी करने वाले बच्चों के वालिदैन के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो अपने बच्चों को बाआसानी तालीम दिला सकें। बच्चों से इनकी बचपन की खुशियां छीन कर इनसे मशक्कत वाला काम लेना इनकी जात के लिए जहनी, जिस्मानी, समाजी और इखलाकी तौर पर इंतहाई खतरनाक और नुकसानदेह है, क्योंकि जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए, इस उम्र में इन मासूम हाथों में भारी औजार और होटल के बर्तन थमा दिए जाते हैं।
5: मेरे पापा फौत हो गए हैं, मेरी मामा ने दूसरी शादी कर ली है और मैं होटल में काम करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे शाम को 300 रुपया मिल जाता है। उनमें से मैं अपनी छोटी बहनों के लिए खाने की चीज़ें और दूध वगैरह लेके जाता हूँ, जिसे खाकर वो खुश होती हैं और मुझे भी खुशी महसूस होती है।
1: इन्हीं के बारे में किसी ने कहा है, अफलास की बस्ती में जाके देखो, वहाँ बच्चे तो होते हैं मगर बचपन नहीं होता। अफराते जर भी बच्चों को मजदूरी करने तक लाने की एक अहम वजह है, क्योंकि महंगाई के इस दौर में बच्चों के या घरेलू अखराजात पूरे नहीं होते तो मजबूरन वालिदैन को बच्चों को काम करने पर भेजना पड़ता है। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन हर साल 12 जून को पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में मनाया जाता है, जिसका मकसद बच्चों को काम करने से रोकना है। कानून बनाने वाले महलों में बैठकर कानून वजा करते हुए इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि असल मसला चाइल्ड लेबर का नहीं बल्कि मुल्क में माशी सूरतेहाल का है, जिसमें करप्शन, रिश्वत और दिन ब दिन बढ़ते हुए टैक्सेस एक अहम मसला है।
6: वहाँ 1,30,00,000 अफराद खत्ते अफलास से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर इफलास की सूरत हाल है कि लोगों को खाने पीने की चीजें मुयसर नहीं है, तो उसमें फिर हमारा शुमार कतार कहाँ, अगर हमारा मुल्क तो वैसे ही कर्जों पे चलने वाला।
1: कौन सी ममता है जो अपने जिगर के टुकड़े को मजदूरी करने वाले औजार थमाए, मगर पेट की भूख और माशरे का तल्ख रवैया इंसान को इस नहज पर ला खड़ा कर देता है कि वो ये सब करने पर मजबूर हो जाता है। एक इंसान होने के नाते हम इस बात के कैसे हामी हो सकते हैं कि फूल से मासूम बच्चों के हाथ काम करते हुए आबलों से भर जाएं? मगर किसी गरीब का गंदगी के ढेर से निवाला तलाश करना भी हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है।
7: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।
4: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya. Ki Duniya, Ki Duniya.

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

0: इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस।

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is Magical Point 6.
1: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.pk पर चेक करें।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.bk पर चेक करें।

0: 501-6601.
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry. That's why we are here. We are UCP Ki Duniya, FM 92.6.
1: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
2: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
3: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
1: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
4: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।
4: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
5: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
6: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی ہے آواز UCP کی دنیا FM 92.6।